0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ, हे घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान महान तेजस्वी देव, मेरे सभी कार्यों को हमेशा बाधा रहित अर्थात बिना किसी विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। रामनाथ दोसराम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। दोस्तों, आज पूरे देश में बप्पा के आगमन की धूम है। चारों तरफ ढोल ताशों की गूंज है और हवा में मोदक की महक। अगले एक घंटे मैं आपके साथ रहूंगा इस गणेशोत्सव स्पेशल शो में। आज हम बात करेंगे कैसे आप इस त्योहार को पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली बना सकते हैं और साथ ही सुनेंगे बप्पा के सुपरहिट भजन। तो बने रहिए मेरे यानी गगन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बप्पा के इस खूबसूरत भजन वंदना से।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
4: 90.8 एफएम। गजाननम भूतगणाद सेवितम कवित जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात हाथी के मुख वाले भूत गणों आदि से पूजित कैथा और जामुन के फलों को चाव से खाने वाले माता पार्वती के पुत्र और दुखों का नाश करने वाले भगवान विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों सुनो शारदा 90.8 एफएम पर एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार एक नया सवेरा लेकर आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन शिव पार्वती के लाडले श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। बुद्धि समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में हम सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। कम्युनिटी रेडियो पर आज हम यही याद करेंगे कि कैसे लोकमान्य तिलक जी ने इस त्योहार को एक सार्वजनिक उत्सव बनाया ताकि समाज के सब लोग एक साथ आ सके। तो चलिए इस संगीतमय सफर को जारी रखते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम मायुष कामार्थ सिद्धये। अर्थात माता गौरी के पुत्र भगवान विनायक को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी आयु, कामनाओं और धन की सिद्धि के लिए भक्तों के हृदय में वास करने वाले बप्पा का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शहर में हर तरफ पंडाल सज रहे हैं, लेकिन इस खुशी के बीच हमें अपनी धरती माँ का भी ख्याल रखना होगा। इस बार कोशिश करें कि हम केवल मिट्टी अर्थात शाड़ू माटी से बने मूर्तियों की ही स्थापना करें और रासायनिक रंगों से हमें बचना चाहिए। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। बप्पा तो प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो क्यों ना इस बार उन्हें एक हरा भरा और स्वच्छ वातावरण उपहार में दें। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मधुर गीत संगीत का ब्रेक लेते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। लड्डुओं को भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं गगन आपके साथ। भाई, सबसे पहले गणेश जी का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है? पानी पानी आता है क्योंकि हम कल्पना कर रहे होते हैं लड्डुओं की, मोदक की। जी हाँ, चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बने ये गर्मा गर्म मोदक बप्पा के सबसे प्रिय हैं। और आज शहर के हर घर में मोदक, पूरन पोली और बूंदी के लड्डू का भोग लग रहा है। वैसे आपके घर में आज बप्पा के भोग के लिए क्या खास बना है, हमें फोन करके या मैसेज करके आप जरूर बताइएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का ये खास कार्यक्रम गणेश उत्सव स्पेशल शो सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। दोस्तों, गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे शहर के अलग अलग चौराहों पर, सोसाइटीज में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, पूरे शहर में बप्पा की आरती की तैयारियां भी चल रही हैं। सुबह सुबह आप उठ रहे हैं, गणेश उत्सव का जो मंदिर है, गणेश उत्सव की जो तैयारियों के बीच जो आपका मंदिर है उसको आप सजा रहे हैं, पंडाल लग रहे हैं, सुंदर झांकी सजाई जा रही है और आप निकल रहे हैं ऑफिस के लिए या ऑफिस जाने वाले, उससे पहले आपने अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ कर रखा है ना? तो बस हम ही कहेंगे कि सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर पहुंचेगा, ऑफिस पहुंचेगा, प्यार बांटेगा, खुशियां बांटेगा। इन सब के बीच एक बार फिर से गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: दोस्तों सुनो शारदा 90.8 FM पर मैं हूं गगन आपके साथ. गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. विघ्न हर्ता का संदेश यानी इंस्पिरेशनल नोट. दोस्तों श्री गणेश को विघ्न हर्ता कहा जाता है यानी सभी दुखों और बाधाओं को दूर करने वाले. आज के दिन हमें बप्पा से सिर्फ सुख समृद्धि ही नहीं मांगनी है बल्कि उनसे ये सीखना है कि कैसे बड़े कान रखकर सबकी बातें सुने, छोटी आंखों से गहरी दृष्टि रखें और हर मुश्किल परिस्थिति को धैर्य से पार करें. अपने जीवन के सारे विघ्न बप्पा के चरणों में छोड़ दीजिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के बारे में। आज से ही गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। हमारे प्यारे बप्पा की दो बेहद खूबसूरत पौराणिक कथाओं की बात अगर हम करें तो पहली कथा उनके जन्म की है, जहां मां पार्वती ने अपने उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण

किया, जो आगे चलकर शिव जी के आशीर्वाद से गजमुख यानी हाथी के मुख वाले विघ्नहर्ता बने। वहीं दूसरी कथा हमें ये सिखाती है कि बप्पा को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है। जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की होड़ लगी तो बुद्धिमान गणेश जी ने कहीं दूर जाने के बजाय अपने माता पिता शिव पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। सिद्ध किया कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार है। दोस्तों, बप्पा की यही बुद्धिमता हमें अपने परिवार का आदर करना सिखाती है। चलिए इसी भक्तिमय भाव के साथ सुनते हैं अगला ये भजन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: गणेश उत्सव की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं गगन आपके साथ सुनो शारदा 90.8 FM पर। दोस्तों, बप्पा का रूप हमें जीवन की बड़ी सीख देता है। उन्हें एक दंत कहा जाता है क्योंकि महर्षि वेद व्यास के साथ महाभारत लिखते समय जब बप्पा की कलम टूट गई तो उन्होंने शर्त पूरी करने के लिए अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। ये रूप हमें अपने कर्तव्य के लिए त्याग करना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जब चंद्रमा ने बप्पा के रूप का मजाक उड़ाया तो बप्पा ने उन्हें श्राप देकर उनका अहंकार चूर किया। यही वजह है कि आज गणेश चतुर्थी की रात को चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। बप्पा की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि ज्ञान के लिए समर्पित रहें और कभी घमंड ना करें। चलिए, इसी सुंदर सीख के साथ लेता हूं अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और गणेश उत्सव में मस्त रहिएगा। गणेश उत्सव की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लेता हूं अनुमति, फिर होगी आपसे भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास

आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। कौन है, कहां से हैं, बड़े ही खूबसूरत दोस्त हैं। उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहाँ से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी की आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद

0: कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं करा था, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच, आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही हैं, जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है, तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश का शहजादी।
0: बांग्लादेश की शहजादी है। तो माधवी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
2: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कम्प्लीट करके यहाँ से जाते हैं, तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ की जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है, वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा
0: यूनिवर्सिटी। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट BSc नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं। 2020 में इनका कोर्स यहाँ से कम्प्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरी यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहां की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर, मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में। और हम जब बाहर में रहती है, जो माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है।
0: इंडिया का सीन,
1: हाँ, इंडिया का सीन, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, कोई भी नहीं आना चाहती थी जो हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जाकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है। हाँ, बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ, नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो का सिलसिला बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई हैं, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार हैं। और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरी यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके।
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इससे मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में, उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो, ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगी। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में इसको हर टाइम मिस करती हूँ, इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिविजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था, वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: माय गॉड, बहुत खूबसूरत
1: इंसिडेंट हुआ। और उतने माधवी मैम बहुत अच्छी है, एक्चुअली के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: सो स्वीट शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स हैं, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही हैं कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहां के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहां का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया?
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था, क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा
0: हेल्प
1: योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं, सब सेम होती है। इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी है, आप एलुमनाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे शहजादी बेबी? हाय हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रही थी, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं।
1: हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्शन मार नहीं रहे थे, और जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना हम।
2: हाँ मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर की बिलिंग जी ने।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: आले मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात करो।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ मैं अब तुम ही बात कर लू।
0: तो खैर बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: इसमें उस टाइम में मैंने जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है, तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो, तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में
0: का वाक्य
2: एक बांग्लादेश का था,
0: बांग्लादेश का।
2: हाँ तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था। तो उसने बोला नहीं ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है डॉक्टर का, अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में तो नर्स का क्यों नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा जो मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
2: हाँ मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इन तीनों को बताया, उसको बोला कि हम लोग ये करना चाहते हैं। उसने बोला
0: दोस्तों ने मिलकर ही,
2: हाँ उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे के ऐसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना।
0: क्या बात है,
2: तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम उतना प्लेस नहीं दिया। उसने बोला ये क्या है तुम क्या करोगी, हमको नहीं करनी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऐसे बोलते थे। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज। तो उसने मैंने क्या किया, मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया, फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको शब्द मिला, उसको से हमारा कौन जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया, तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया। और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात है, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ। बहुत अच्छा एक स्ट्रगल
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी उसको दिखानी है। इसको दिखानी है तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया, उसको सिखाया फ्री में। हमारा जो ये सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ दुआई लेते हैं।
0: बहुत खूबसूरत।
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सब कुछ सिखाती है, सब कुछ करते हैं, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं। तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 हॉस्पिटल में कर लिया है काम। अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है। तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया, नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं। जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए लोगो बनाने के लिए, तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रुपी लगेगी। मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे। तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है, तो उसने बोला 1,000 लगती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा, उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है।
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करके बहुत
2: खुशी हुई। तो उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया, उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला। फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया, एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको अवार्ड रिवार्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया। हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है, एक अच्छा सोसाइटी है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें। आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा।
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे, लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ।
0: हाँ?
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं, पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना।
0: बाद तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो। खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी, कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत, सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपको अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी जो कि यहाँ की पास आउट है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं, खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती हैं, खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं। तो शहजादी है मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसी कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई। क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, शहजादी अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक का था, टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल आईसीयू है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उसके काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: ओह माय गॉड।
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड था, हार्ट अटैक था। तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को, इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो स्प्रेस होगी उसमें, इसलिए जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेफ करनी है। तो मैंने बोला वो सब, तो डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने, मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोती है ना, वो मेरे दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: आए हाय माशाल्लाह।
1: तो उसमें
0: तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रही है। देखो, किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकन नहीं लगा, उसने मेरे को एक ही चीज था, कि वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
0: Oh my God.
1: तो और उसको बीबी भी 17 का है, हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं। तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो, हाँ मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया, उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रहा। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसी उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचाने हैं। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में देखती हूँ, कोई दिक्कत में देखती हूँ, अगर उसको कुछ कर सकती हूँ, उसको हंसी दे सकती हूँ, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: अच्छा। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता। आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखेगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए। रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं, आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं।
1: हाँ, मैं कहने चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत ये बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है। तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी, कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको ये एनक्यू है उसमें हेल्प लेकर, हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ, तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ उसको, सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है। तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसका भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
0: अपनी सिटी में करा, देश
1: हमारे
0: में करा।
1: देश में किया, आपका इंडिया में भी करा, आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है।
0: अच्छा, ग्रेट। शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और किसी कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई that when people when I die people should have a smile on their face that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे, शाबाश शाबाश मेरे लाल लगे रहो।
0: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी।
0: ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं।
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी? तुम बताओ।
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
2: हाँ देखा तुम,
1: प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है। शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता
1: रहे। और एक बात बताओ, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे। ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें।
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: वाह, मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो।
1: ठीक है,
0: बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे। तो शहजादी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा। आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा मेरी तो निकल पड़ी, मजा आ गया। मैं फेमस हो गया। देखो कहीं बांग्लादेश जाऊंगा, मैं नीदरलैंड जाऊंगा, मैं जब जहाँ जहाँ जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहाँ एक बहादुर है, मेरे को आई लव यू बोला था उसने।
0: चलिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सबने पसंद किया। दिल से एक बार फिर शहजादे आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माधवी की वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं।
1: हाँ, ये तो मैं पहले ही बोला, जब मैं उसको देखा था और तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था, तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में, इंडिया में, तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी। तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है, उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसे से मेडिटेशन सीखा है। देन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है लाइक व्हेनेवर आई फॉल, लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर, लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच, आई हैव अ डिप्रेशन, एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक अ लायन, आई फील लाइक देयर वॉज अ लायन टू कम एंड सेव मी। So this is the, she is like that, they always helping me as a lion. So I really appreciate her, whatever she's doing for me, this is really thankful.
0: थैंक यू सो मच शहजादी, और शुक्रिया आपके लिए माधवी। बहुत अच्छी बात आपके फेवर में सुनने को, समझने को मिल रही है। बाकी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे टैलेंट को अगर आप ढूंढ कर लेकर आ रही हैं जो अपने लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कि यहाँ के शारदा के एलुमनाई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुछ और कहना चाहती हैं माधवी आप? कह सकते हैं
3: हाँ, और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है, तो एलुमनाई में हमारे जो मेन, जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है, जो मेन इसकी लाइक की करता धरता मैम है, मोनिका मैम, गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी, मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर, हरी सर, मोनिका मैम, दिस ऑल आर वर्किंग एज ए टीम। तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनॉग्रेट कर रहे हैं एवरी कंट्री में, अनुराग एंड उनकी टीम, सो आई विद देयर कोलैबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी, दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई, दे आर डूइंग, आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी, तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन कंट्री लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे। दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं, वी वॉन्ट टू सर्व दिस कंट्री, बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे, और अब इस कंट्री को जरूरत है, वहां के इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था, पर इंडियन नर्सिंग जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया।
0: क्या बात है, अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते। सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया, और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है। शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें, अच्छी चीजें, कि दुआएं हर किसी को चाहिए, और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं। किसी का दिल जीतना आसान है, बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए, और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
3: धन्यवाद।
0: आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। न टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि वेयर आर यू द शारदा यूनिवर्सिटी इज हियर। बिल्कुल आपने सही सुना कि आप कहाँ हैं, हम यहाँ हैं। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बात किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं को दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:07 हो चुके हैं, 14 तारीख है, यानी कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि हम शुभ कार्य करते रहें, प्रेम का श्री गणेश करें और किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए। साथ ही साथ आज कौन सा खास दिवस है उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, लेकिन सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, जीवन भी खुशी के साथ गुजरे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नियम कायदे कानून के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, किसी का गलत नहीं सोचेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर गणपति बप्पा की आपके ऊपर जो कृपा है वो बनी रहेगी। चलिए इस दिन की, इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चारों तरफ हम देख रहे हैं पंडाल सज रहे हैं, मंदिरों में धूम मची हुई है और लोग आज अवकाश पर हैं बिकॉज गणेश चतुर्थी की वजह से। वैसे देखा जाए तो 3 दिन की छुट्टियां पहले भी लोगों को मिल चुकी हैं और जिनके पास छुट्टियां बाकी हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और उसके बाद फिर से कल से आपको ड्यूटी ज्वाइन करना ही करना है। तो कहने का मतलब यही है कि गणेश उत्सव की पूजा की जो विधि है उसको विधि विधान से आप करेगा, समय का ख्याल रखेगा, मंत्रोच्चारण का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। कहने का मतलब यही कि उच्चारण साफ सुथरा होगा तो निश्चित तौर पर आपकी पूजा लगेगी जरूर। अदरवाइज किसी का नाम गलत लोगे तो वो सुनेंगे ही नहीं। हाँ, वो सुनेंगे ही नहीं। और गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करते हैं आप और हम कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हे पिता परमेश्वर, हमारे कार्य को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। जैसे कि गणपति बप्पा ने ब्रिक्स 2026 का सफल आयोजन होने दिया और हम सब के ऊपर उनकी कृपा बनी है, बनी रहे, और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए बड़े गर्व का क्षण था ब्रिक्स 2026 इस सफल आयोजन के लिए। सभी देशवासियों को बहुत बहुत हरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गणपति बप्पा की इतनी सारी महिमा गाने के बाद, महिमा के बारे में बताने के बाद ये ब्यूटीफुल ट्रैक तो बनता है ना, सिर्फ और सिर्फ सुरुशाता 90.8 एफएम पर चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लिंक कट्टी पूरे होश आवाज में चलाएगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, देवा श्री गणेश देवा। अग्निपथ फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया ये गाना, सिर्फ सुरुशाता 90.8 एफएम पर। क्या

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर न...

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है कि वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वधा। अर्थात हे घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान महान तेज वाले देवा, मेरे सभी कार्यों का हमेशा बिना किसी बाधा के निर्विघ्न पूरा करें। ईश्वर से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और सच बात तो यह है कि जब ब्रिक्स 2026 की शुरुआत हुई थी तो हम सब भारतवासी भी यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सकुशल ये कार्यक्रम हो। और निश्चित तौर पर जब बधाइयां हमें मिल रही हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारे तरफ थी और उसका जो परिणाम है आज पूरा विश्व देख रहा है, तो इस बात के लिए भी ब्रिक्स 2026 के लिए बहुत सारी ढेर सारी दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, गणेश उत्सव पूरे विश्व में, पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया, इस वक्त जो माहौल है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वो देखते ही बनता है। पूरे मतलब यूं समझ लीजिए कि कई दिनों का, कई हफ्तों का ये कार्यक्रम होता है। लेकिन जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक विसर्जन का दिन आता है। तो कई लोग डेढ़ दिन का विसर्जन रखते हैं, तीसरे दिन का विसर्जन, पांचवें दिन का। लेकिन जो मेन विसर्जन है अनंत चतुर्दशी को, यानी कि 25 सितंबर 2026 शुक्रवार को मेन विसर्जन की तिथि घोषित की गई है। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है खुला खुला नजर आ रहा है, अर्थात ऐसे में खुले में आप टेंट गाड़ सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। मौसम का जो मिजाज है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं नमी, लगभग 71 से 75% रहने की संभावना है। और ट्रैफिक अपडेट की अगर हम बात करें, तो जब आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर अंडरपास का काम चल रहा है, साइड का काम चल रहा है, तो इस तरीके से डायवर्जन का जो काम चल रहा है, तो वाहनों को सलाह दी जाती है, जो ड्राइवर साहब है उनको ये कहा जाता है कि बहुत स्लोली स्लोली अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ें, ट्रैफिक के नियम कानून का पालन करें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और यही सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज है जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, अप टू डेट आपको रखते हैं हमेशा अपडेट के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओम गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक श्लोक है कि गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फलचार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हाथी के मुख वाले भूतों, गणों आदि द्वारा सेवित कैथा और जामुन के फलों का रस खाने वाले, माता पार्वती के पुत्र और दुखों का नाश करने वाले भगवान विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस उत्सव को अच्छी तरीके से मनाइए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए, दूसरों के साथ सेलिब्रेट करिए और खुशियाँ बांटते चले जाइए। जब आप खुशियाँ बांटते तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो ये भी तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रख कर रखिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ईश्वर आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। तो गणपति दिवस की, गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, लख लख बधाइयों के बीच एक अच्छी खबर हमारे बीच में आई तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं। चक दे इंडिया, जब चक दे इंडिया का मैं जिक्र कर रहा हूँ,
2: अरे फिल्म नहीं, समझ लो कि कुछ खास खबर लेकर आए कालिया। नहीं नहीं, मेरा नाम गगन है, गगन लेकर आए।
1: जो हमारी विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल एक फाइनल, बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ और इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 72 रनों से विमेंस T20 एशिया कप 2026 का जो खिताब है अपने नाम कर लिया। 72 रनों से हमने उनको हराया और आठवीं बार, आंकड़े हमें बता रहे हैं कि लगातार आठवीं बार, लगातार तो नहीं कहेंगे सॉरी, आठवीं बार एशिया कप की ट्रॉफी हम लोगों ने जीती है। और इसके जो हीरो रहे उसके बारे में अगर हम बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 68 और उप कप्तान स्मृति मंदाना ने 59 रन से पहले विकेट के लिए 129 रनों का रिकॉर्ड किया और विमेंस T20 एशिया कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दोस्तों ये सबसे अब तक की बड़ी साझेदारी है। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं तो 144 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी जो श्रीलंकाई टीम है और स्पिन आक्रमण की वजह से वो टिक नहीं पाई और भारत की ओर से एन श्री चरणी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट उन्होंने अपने नाम किए और जबकि सीनियर स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मुकाबले में ताबड़तोड़ 68 रन बनाने और 1 विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो लख लख बधाइयां तो बनती है ना। अधूरी, हाँ ये अधूरी मैंने पाकिस्तान के लिए लगाया। हंस रहे हो, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर।

ओम गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव की एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी ढेर सारी दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक श्लोक है कि एक दंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्नाशकरम देवम हेरम्बम प्रणमाम्य हम। अर्थात एक दंत वाले, विशाल शरीर वाले, लंबे पेट अर्थात लंबोदर और हाथी के मुख वाले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले देव हेरम्बम अर्थात गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, बेहतर हो। लेकिन ईश्वर आपके साथ, हमारे साथ तब तक है जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, है ना। तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ब्रिक्स 2026 का जो आयोजन रहा बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। इसी दौरान वीमेंस 2026 का जो कप है, एशिया कप, हमारी झोली में आया, तो इस बात के लिए भी लख लख बधाइयां। हमने श्रीलंका को 72 रनों से हराया। और ब्रिक्स की अगर हम यूं कहें कि एक नज़र डालें ब्रिक्स के ऊपर, तो बड़ा गर्व का एक विषय रहा कि भारत चीन संबंध की अगर मैं बात करूं तो चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 सालों में पहली बार भारत दौरे पर आए और पीएम मोदी के साथ उनकी जो द्विपक्षीय बैठक में व्यापार को वो सामान बनाने और संबंधों को सुधारने और लंबे समय से जो एक सीमा का जो विवाद चला आ रहा है, जो बॉर्डर का विवाद चला आ रहा है, उसको सुलझाने की बातें हुई। और वहीं रूसी राष्ट्रपति की उपस्थिति 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से रूस से वो बाहर किसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली व्यक्तिगत भागीदारी थी। और निश्चित तौर पर पूरे विश्व की निगाहें हम सब के ऊपर थी और इस सफल आयोजन के लिए हम सबको लख लख बधाइयां। ये गाना तो बनता है ना, ओले ओले ओले ओले। हो सकता है कि कई लोगों को दिक्कत परेशानी हुई होगी कि भारत किस कदर आगे बढ़ रहा है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। सुनो शारदा 90.8 FM पर गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: अपनी सेहत से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए, पालतू जानवरों से प्यार करिए, सबसे प्यार करिए और बस गणपति बप्पा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। गणपति बप्पा जो कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे जैसा आप करेंगे, जो हमें बड़े बुजुर्ग रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि प्यार करिए, खुश रहिए, जियो और जीने दो, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं टेंशन लेने का नहीं बीड़ू, टेंशन देने का, लेकिन अपन बोल ले रहा है। ये क्या है, अरे मुंबई बा भाषा आ गई, लेकिन हम बोल रहे हैं ना किसी को परेशान करने का, ना खुद परेशान होने का, जियो और जीने दो, चलेगा? हाँ, ये दौड़ेगा। गुड मॉर्निंग, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। हमारे ग्रेटर नोएडा में क्या खास हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसके बारे में बात ना करें, तो उसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अब सुनने में आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आज किसानों की बड़ी महापंचायत है 14 सितंबर को, तो अगर आप उस तरफ आ जा रहे हैं तो बहुत सोच कर समझ कर संभल कर जाएगा,
1: मतलब दिक्कत परेशानी ना हो, ट्रैफिक की बात करें, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ,
0: चलिए दूसरी बात सुनने में ये आ रही है कि सूरजपुर कासना रोड पर एक जगह का नाम नटो की मड़िया से कासना तक 1.5 किलोमीटर लंबी एक्स्ट्रा लेन का काम शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से ये रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और जिस वजह से जेवर एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यानी कि GBU रूट पर अब आने जाने वालों 1 लाख से भी ज्यादा जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उनको आने वाले समय में बहुत राहत मिलेगी। तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वक्त इशारा में होता 9:11, गणपति दिवस की बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणेश भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। वक्त इशारा में हो रहा हूं 9:11, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। कैसा लगता है प्रोग्राम, सुरशारदा 90.8 FM के फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पर भी आप हमें अपनी बात शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।
2: डब्बी च काली बोरिया 40 अगला सेकी वीड सिबाली

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों 9वां राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, जो कि 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी शुरुआत 2018 से की गई थी और ये अभियान हर साल सितंबर महीने में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार के अभियान की बात करें तो इसका औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से किया गया। और इस वर्ष 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की जो थीम है वो है हमारी आंगनवाड़ी हम सबकी जिम्मेदारी, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है देश के करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, शिशु देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में मजबूत करना है। और आंगनवाड़ी केंद्रों का यही काम होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शुरुआती शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, उनको कराया जाए, साथ ही साथ उनको पोषण आहार दिया जाए और जो गर्भवती महिलाएं उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके साथ चर्चा की जाए, गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और जब वो पैदा हो तब कैसे उसका ख्याल रखा जाए, बहुत सारी बातों की जानकारियां उनको वहां पर दी जाती हैं। टीकाकरण भी किया जाता है और समय समय पर बैठकें भी होती रहती हैं जिसमें खान पान की बातें होती रहती हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना है। अक्सर महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, हर वक्त थकान सी बनी रहती है, तो ये सब बातें वहाँ उनको बताई जाती हैं किस तरह से उससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं डॉक्टर वेबी शर्मा जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और खासकर वो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज करती हैं। तो डॉक्टर बेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें, बच्चों में भी होती है खून की कमी, एनीमिया, तो इसका रीजन क्या है और किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सकता है?
1: खून की कमी यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीजन है वो तो यही है सर कि पोषण की

0: खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी। और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीजन हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी, तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
0: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीजन का पता चल जाए। जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए, जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाय डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एनीमिया कोज कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीजें हम मेंशन करते हैं। शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम। अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपके सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं

0: जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, 1 या 2 चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीजन में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीजन में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात, जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज़्यादा केसेज आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
0: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं परिवार वाले हैं?
1: लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की, क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा 1 हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टिस और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आँखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार ये हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले माता हैं वो कैसे रखेंगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ओम गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में

0: कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। विटामिन बी 12 डीएनए बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन बी 12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन बी 12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन बी 12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन बी 12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन बी 12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन बी 12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन बी 12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन बी 12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन बी 12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन बी 12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन बी 12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
7: नमस्ते दीदी।
6: तो आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है, तो बोले कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
8: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको 4 प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और विभाग है, जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतरविभागीय जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प है उसका पानी लोग न पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियां हैं, ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो आईसी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: गण गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

गण गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.4

0: लिमिटेड एफएम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरु शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो

0: स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं, तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल की और साथ ही साथ आप मोटे अनाज की खेती यानी कि श्री अन्न की खेती कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप करते थे लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया था जहां पर आपने मोटे अनाज की खेती करना छोड़ दिया, लेकिन आज के समय में मोटे अनाज की बाजार में बहुत मांग है और अच्छी कीमत में आप इनको बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधारू पशुओं की। जी हाँ किसान मित्रों, हमारे जो पशु हैं और हमारी जो खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से हमें 3 महीने में 6 महीने में उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है और साथ ही साथ हमारे जो दुधारू पशु हैं वो घर का खर्च चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब कभी खेती में नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं के द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से खेती का और पशुपालन का तालमेल चलता रहता है और जो किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उनको खेती में भी घाटा नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो किसान मित्रों, दुधारू पशु हमारी आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अगर हम पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो वो है गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। तो किसान मित्रों, अगर आपको इन बीमारियों का कोई भी संक्रमण आपके पशुओं में दिखे तो आप तुरंत पशुओं के डॉक्टर से बात करें। किसान मित्रों, खुरपका मुंहपका रोग जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहते हैं, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी हो जाता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगली करना पशु बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है और पशुओं के थनों पर छालों से कभी कभी थनेला की बीमारी हो सकती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर और थन में पड़े फफोलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात आती है कि आप अपने दुधारू पशुओं को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो उसका सही और सीधा रास्ता ये है कि आप अपने सभी पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए पशुओं को FMD के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए। तो अपने पशुओं का टीकाकरण करवाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय जा सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं और अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमार हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। संक्रमित पशुओं को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे उनको खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श लेते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पशु हैं वो रोग मुक्त रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाते रहेंगे। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कि हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

मित्रों, मोटे अनाज जिनसे आप बखूबी परिचित होंगे और पहले आप इनको खूब करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने इनको करना छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल बाजार में हर जगह, हमारे देश के अलावा विदेशों में भी मोटे अनाजों की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो एक तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, इनका सेवन करेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि मोटे अनाजों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। अब किसान मित्रों, मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाजों को सुपर फूड और पोषक अनाज कहा जाता है। किसान मित्रों, बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इससे बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में बाजरा, ज्वार, सवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू और चौलाई प्रमुख रूप से मोटे अनाज या यूं कहें श्री अन्न पैदा किए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करेंगे हम कि मोटे अनाजों की इतनी आजकल मांग है, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे गुण इनमें पाए जाते हैं जो कि बाजार में इनकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग अब बहुत ज्यादा मोटे अनाजों को खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं प्रीति चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रीति चौधरी से ये देशभक्ति रागनी। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल जो श्री अन्न है, मोटे अनाज है, उनकी मांग क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों उनको खरीद रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मोटे अनाज हैं वो गुड़ों की खान है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होगा ही। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपके फायदे की बात यह है कि जो मोटे अनाज हैं, अगर आप इनकी खेती करते हैं तो हमारी अन्य जो खेती हैं उनकी अपेक्षा इनमें लागत कम आती है। तो ये भी आपके लिए एक फायदा रहेगा कि आपकी लागत मोटे अनाजों को करने में कम आएगी और आपको फायदा ज्यादा होगा। तो आप जरूर मोटे अनाज की खेती करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और जहां तक ये श्री अन्न पहुंचेगा आपके द्वारा तो वो भी स्वस्थ रहें और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी खेती करें जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो और खेती में लागत कम आए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मोटे अनाज की खेती की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का और गायक कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महाभारत के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे लोकेंद्र सिंह। इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: गढ़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

बयान सुने तो उसे विश्वास हो गया कि दरोगा ने मुझे बेटी कह दिया, मेरी मदद जरूर होगी, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रेमी साथियों, अब तो उर्मिला दरोगा जी के सामने

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
1: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
0: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
1: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
0: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
1: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
0: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: फातिमा बेटा, तुम्हारे अब्बू आ रहा है इंदौर से। ये घर पूरा बिखरा हुआ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उनको बिल्कुल इस तरह से पसंद नहीं है कि घर में कहीं भी कोई भी सामान पड़ा रहे। तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी समेट दो और मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है।
3: जी अम्मी।
4: अरे अब्बू, आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं?
4: अब्बू वो तो मार्केट गई हैं।
5: और तुम्हारा छोटा भाई?
4: वो भी खेलने गया है।
5: सब के सब अपने मर्जी के मालिक बने बैठे हैं। घर पे ना रहो तो सब हाथ से निकलते जाते हैं। क्या जरूरत थी उनको मार्केट जाने की? उन्हें नहीं पता था कि आज मैं आने वाला हूँ।
4: अब्बू पता तो था, लेकिन किचन का सामान लेने गई है।
5: तुम्हारा भाई कहाँ है?
4: अबू वो खेलने गए हैं बाहर।
5: पिछले हफ्ते तुम्हारे टेस्ट थे ना?
4: जी अबू।
5: रिपोर्ट कार्ड?
4: वो मिला है, मैंने रखा है।
5: दिखाना जरा।
4: अभी लाती हूँ। ये लीजिए अबू।
6: अरे आप आ गए, सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे बेटी का रिपोर्ट कार्ड है। यही पढ़ाई हो रही है? यही ख्याल रख रही हो तुम इसका? यही इसके पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो तुम?
6: लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो, नंबर तो सही था उसका।
5: नंबर सही है? ये 80% मार्क्स आए हैं, ये सही है। फीस तो पूरा दिया जाता है, फीस में तो कोई कटौती नहीं होती है। टाइम से पहले तुम फोन कर देती हो कि फीस जमा करना है, फीस जमा करना है, और ये मार्क्स ऐसे आ रहे हैं उसके?
7: तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है? अब मैं समझ चुका हूँ, अब इनके पढ़ाई को हम आगे जारी नहीं रख पाएंगे। मैंने सफीक भाई से बात कर लिया, उनका एक बेटा है जो दुबई में काम करता है, अच्छी खासी पोजीशन पे है, महीने का अच्छा खासा कमाता भी है, वहाँ पे शादी करेगी, खुश रहेगी जिंदगी भर।
6: अरे इतनी जल्दी? और शादी तो होनी ही है, उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए।
7: कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। हमने आपसे क्या कहा? एक बार का कहा आपके कान में नहीं घुसता है। और ये क्या बदतमीजी है? तब से मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, किसी ने मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा।
6: जी जी जी, अभी लाती हूँ। फातिमा बेटा पानी लाओ अबू के लिए।
4: हाँ अबू, ये पानी लीजिए।
7: ये क्या है? सिर्फ पानी? सादा पानी? इसके साथ कुछ घर में है नहीं? मैं पैसे नहीं भेजता वहाँ से।
6: अरे फातिमा, अंदर मिठाई रखा है, मिठाई में से ले।
7: कोई जरूरत नहीं है, ये पानी तुम पियो। ये
4: अम्मी आप चुप हो जाइए, मत रोइए।
6: फातिमा तुम अंदर जाओ।
2: खाना लग गया है टेबल पर। फातिमा
4: जी अम्मी,
2: रोजी और राजा दोनों को बोल दो और अब्बू को भी बोल दो आकर नाश्ता कर लें।
7: खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, बनाया क्या है खाने में तुमने?
2: आज आपकी पसंद का राजमा पूरी बनाया है मैंने और उसके साथ रायता भी है, सलाद भी है, बस यही सब।
7: चलो तुमने बना ही दिया है, वैसे रात में कुछ ऐसा बनाना कि लगे कि हाँ मतलब ये खाने लायक, ठीक है लगाओ इसे।
2: जी
7: सुनो, मुझे ये पूड़िया कम देना और ये हटाओ ये, और रायता दे दो थोड़ा सा, बस इतना ही।
2: जी ठीक है, बैठिए।
7: और छोटू राम, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी, या सिर्फ बस ऐसे ही खेल चल रहे हैं? थोड़ा पढ़ भी लिया करो, वरना इसी बैट से टांगे तोड़ के तुम्हारे घर पे बैठा दूंगा मैं। अगर इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए ना, फिर तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
4: अबू, आपसे कुछ बात करनी थी हमें।
7: हाँ बताओ।
4: वो अगले हफ्ते मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है।
7: हाँ फिर?
4: तो उसके लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए।
7: वैसे एक बार फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि मैंने कल ही कहा था कि अगले हफ्ते हम तुम्हारे निकाह की बात के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं और आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत है नहीं। ये पढ़ाई का भूत अपने सर से उतारिए, चुपचाप से अम्मी के साथ जाइए किचन में, सीखिए कि खाना कैसे बनाया जाता है, बस काफी आपके लिए। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये फालतू के पढ़ाई के चक्कर में आप ना पढ़े तो ही बेहतर रहेगा, समझिए आप?
4: हाँ अबू, समझ गए।
7: अच्छा सुनिए।
2: जी बताइए।
7: आज मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, रात को देर तक मैं लौटूंगा।
2: ठीक है जी। वैसे कहाँ जा रहे हैं?
7: वो वीजा ऑफिस में कुछ काम अटका हुआ है, वही कंप्लीट करने।
2: अच्छा ठीक है।
4: अम्मी।
2: हाँ बोलो फातिमा।
4: अबू कब तक जाएंगे घर से?
2: पता नहीं बेटा, अभी तो कोई ठीक नहीं है, क्या हुआ?
4: अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और अबू को देखिए ना, वो तो मेरी निकाह के पीछे ही पड़े हुए हैं।
2: हाँ फातिमा, मैं भी तो परेशान हूँ इस बात से।
4: और अम्मी, अगले हफ्ते मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। और जो क्लासेस चल रही हैं बिना लैपटॉप या बिना टैब के, मैं क्लास कर भी नहीं सकती। और सुबह देखा ना आपने, अबू से कहा तो वो कैसे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, कम से कम मेरा 12th तो फाइनल हो जाने दीजिए आप लोग।
2: हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और रही टैब की बात, तो उसकी चिंता तो तुम छोड़ दो, टैब की व्यवस्था मैं कर दूंगी, तुम जाओ आराम से पढ़ाई करो।
4: थैंक यू अम्मी, अब बहुत अच्छी हो।

0: ये लीजिए अम्मी पानी।
1: वाओ डैड, ये मेरे लिए है अम्मी। कितना खूबसूरत है। हाँ, थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच।
2: अब तुम आराम से पढ़ाई करो, शादी की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना।
1: हाँ अम्मी ठीक है।
2: कैसा लगा वैसे तुम्हें?
1: बहुत खूबसूरत है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट आप दोगे मुझे।
2: ये गिफ्ट नहीं है बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए है।
1: हाँ मम्मी मैं समझ रही हूँ, मैंने कहा था ना आपसे।
2: फातिमा देखो दरवाजे पे कौन है।
1: जी अम्मी। अरे अबू आप।
3: हाँ तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? एक सेकंड दिखाना जरा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये कहाँ से आया?
1: वो अबू अम्मी लेकर आई हैं।
3: ये तुमने इसे लाके दिया है? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
1: वो
3: कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास?
1: मेरे गहने।
3: ये टैब खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने तो नहीं दिए थे तुम्हें कोई पैसे।
1: हाँ मैंने मेरे सोने के कंगन बेच दिए।
3: तुमने सोने के कंगन बेच दिए अपने इस टैब के लिए? तुमको मैंने बोल रखा था ना ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में ना पढ़ो, तुम्हारा निकाह मैंने तय कर रखा है। तुम ये टैब लाओ।
1: छोड़ दीजिए ना, पढ़ने दीजिए उसको। अबू
2: चुप हो जाओ फातिमा।
3: फातिमा तुम अंदर जाओ।
1: जी दे।
3: तुम्हें किसने बोला था अपने कंगन बेचने को?
1: वो उसकी पढ़ाई की।
3: वो कंगन तुम्हें मैंने दिया था ना?
1: जी।
3: तुमने उसे बेच कैसे दिया? कैसे बेच दिया तुमने?
1: ये फातिमा की पढ़ाई के लिए जरूरी था।
3: तुम्हें मैंने बोला था ना कि उसकी पढ़ाई बंद करवा दो, उसकी निकाह मैंने तय करवा रखी है।
1: हाँ बोला था आपने।
3: फिर तुमने क्यों बेचा? क्या जरूरत था?
1: जरूरत था उसकी पढ़ाई के लिए, मुझे लगा कि पढ़ लेगी तो उसका ये लास्ट ईयर फाइनल हो जाएगा।
3: मैं लड़के वालों से कल ही बात करता हूँ, अगर दो हफ्ते के अंदर इसकी मैंने निकाह नहीं करवाई ना फिर तुम देखना।
1: नहीं क्यों परेशान कर रहे हो?
3: मोहतरमा क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: कबूल है।
3: क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: कबूल है।
3: क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: कबूल है।

0: मुबारक हो।
1: अरे अम्मी जान, आप काम कर रही हैं? फातिमा कहाँ है? रुको मैं देख के आता हूँ महारानी कहाँ बैठी हुई है। आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि घर में कितना काम पड़ा है? आपके वालिद ने हमें इतना पैसा नहीं दिया है कि हम जाके नौकर लाकर रखें।
2: जी जाती हूँ।
1: अम्मी जान कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हैं। शाम को पार्टी रखी है और पार्टी का सारा इंतजाम आपको करना है। और यह लिस्ट है और शाम तक यह सारी चीजें बन जानी चाहिए।
2: इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी।
1: तुम नहीं कर पाओगी इसका क्या मतलब? इसके लिए हम नौकर लाएं?
2: मैंने कब कहा कि आप इसके लिए नौकर लाओ? लेकिन इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी मुझे।
1: तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर कोई नहीं है और सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा।
2: मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम, मैं नहीं करूंगी।
1: तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से जबान लड़ाएं? हमसे जबान चलाती है? हम तुम्हारे शौहर हैं।
2: आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आपको किसने ये हक दे दिया? मैं आपकी बीबी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मैं मायके जा रही हूँ।
1: अच्छा, अब मायके जाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, मैं भी देखता हूँ अब तू कैसे जाती है। पड़ी रहे अब इस रूम में। अभी बताता हूँ मैं तुझे, मायके जाएगी तू अब?
2: हाँ, मैं जाऊंगी।
1: अच्छा, ये ले।

ये कहानी थी फातिमा की, जो मुस्लिम परिवार से थी। कहानी में आपने ये सुना कि फातिमा आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन ये बात फातिमा के अब्बू को कतई मंजूर नहीं था कि फातिमा आगे की पढ़ाई जारी रखे, और इसलिए उन्होंने फातिमा की शादी निर्धारित उम्र से पहले ही तय कर दी। फातिमा की माँ ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि फातिमा की पढ़ाई आगे भी जारी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पति के गुस्से के आगे फातिमा की माँ भी हार गई। फातिमा की शादी कर दी गई। जब वो ससुराल गई, तो वहाँ भी उसके साथ वही हुआ जैसा उसके पिता उसकी माँ फातिमा की माँ भी हार गई। फातिमा की शादी कर दी गई। जब वो ससुराल गई, तो वहाँ भी उसके साथ वही हुआ जैसा उसके पिता उसकी माँ के साथ कर रहे थे। फातिमा का पति ना तो उसे पैसों का अधिकार दे रहा था और ना ही पढ़ने का अधिकार। फातिमा से नौकरों की तरह काम कराया जा रहा था। और एक दिन फातिमा ने जब इस बात का विरोध किया, तो उसके पति ने फातिमा को मारा भी और बाद में फातिमा के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे घायल कर दिया। लेकिन उसके बाद फातिमा का जो डर था वो खत्म हो गया और उसने अपनी माँ को कॉल किया, माँ से पूरी बात बताई। उसकी माँ ने अत्याचार तब तक सहा जब तक कि उसके ऊपर हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता लगा कि उसकी बेटी के साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ है, तो उसने तुरंत फातिमा को साथ लिया और पुलिस के पास गई। वहाँ उसने अपने साथ और फातिमा के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो हर रोज इस तरह की हिंसा की शिकार हैं। इस बात को सोचकर कि हिंसा करने वाला हमारा पति है या हमारा बेटा है, वो चुप हो जाती हैं और इस बात का विरोध नहीं करती। किसी को थप्पड़ मारना, दांत से काटना या किसी भी वस्तु से शरीर को चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा होती है। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है, तो आप महिला हेल्पलाइन या महिला थाना या इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करें। और अगर आपके साथ हुई हिंसा का आपके पास कोई सबूत है, तो उसे भी साझा करें। इसके अलावा आप घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हिंसा का विरोध करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ना कि हिंसा सहकर आप बढ़ावा दें। फातिमा ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज कराई और उसे तुरंत ही सुरक्षा प्रदान की गई। फातिमा ने तो अपने साथ हुए हिंसा पर रोक लगाई और उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। अब बारी आपकी है, क्योंकि फातिमा की तरह न जाने हमारे देश में कितनी महिलाएं हिंसा की शिकार हैं, हिंसा की पीड़िता हैं और इसके खिलाफ वो कुछ कर नहीं पाती हैं। तो ये सारी जानकारियां आप तक इसीलिए पहुंचाई जा रही हैं ताकि आप हिंसा को सहे नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्ते।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान

में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 एफएम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: ओम
1: गणपतये नमः।
0: ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaste class. टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: वो सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

थर्ड पॉइंट, क्लियरली द आंसर इज येस. कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स. लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्रायंगल फॉर दिस सेट ऑफ लेंथ्स. रिमेंबर दैट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल, बट वी आर ओनली सपोजिंग दैट इट एग्जिस्ट. लेट अस ड्रॉ अ रफ डायग्राम. हियर वी हैव अ फिगर 7.4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड लेंथ्स बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स एंड ए सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स. पेज नंबर 153. डज एवरीथिंग लुक राइट विद दिस ट्रायंगल? इफ दिस ट्रायंगल वर पॉसिबल देन द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस शुड बी शॉर्टर दैन द राउंड अबाउट पाथ वाया द थर्ड वर्टेक्स. इज दिस ट्रू फॉर अवर रफ डायग्राम? लेट अस कंसिडर द पाथ्स बिटवीन बी एंड सी. डायरेक्ट पाथ लेंथ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. वॉट इज द लेंथ ऑफ द राउंड अबाउट पाथ वाया द वर्टेक्स ए? इट इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स बी ए एंड ए सी. राउंड अबाउट पाथ लेंथ इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स प्लस 30 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स. इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर दैन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? येस. लेट अस नाउ कंसिडर द पाथ्स बिटवीन ए एंड बी. डायरेक्ट पाथ लेंथ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स. फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द राउंड अबाउट पाथ वाय द वर्टेक्स सी वी गेट राउंड अबाउट पाथ लेंथ इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स प्लस 10 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स. इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर दैन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? येस. फाइनली कंसिडर पाथ्स बिटवीन सी एंड ए. डायरेक्ट पाथ लेंथ इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स. राउंड अबाउट पाथ लेंथ इज इक्वल टू सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स प्लस 15 सेंटीमीटर्स दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स. इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर दैन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? इन दिस केस द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर विच इज एब्सर्ड. कैन सच अ ट्रायंगल एग्जिस्ट? नो. देयरफॉर अ ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर्स 15 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स कैनॉट एग्जिस्ट. वी आर दस एबल टू फाइंड विदाउट कंस्ट्रक्शन वाई अ ट्रायंगल फॉर द सेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स 15 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स कैनॉट एग्जिस्ट. वी हैव बीन एबल टू फिगर दिस आउट थ्रू स्पेशियल इंट्यूशन एंड रीजनिंग. रिकॉल हाउ वी यूज्ड सिमिलर इंट्यूशन एंड रीजनिंग टू डिस्कवर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस. वी विल कंटिन्यू टू डू दिस एज वी एक्सप्लोर ज्योमेट्री. कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ्स 3 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स? वेरीफाई योर आंसर बाई कंस्ट्रक्शन. इन द रफ डायग्राम इन फिगर 7.4 इज इट पॉसिबल टू असाइन लेंथ्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर सच दैट द डायरेक्ट पाथ्स आर ऑलवेज कमिंग आउट टू बी शॉर्टर दैन द राउंड अबाउट पाथ्स? इफ दिस इज पॉसिबल देन द ट्रायंगल माइट एग्जिस्ट. इज सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंथ्स पॉसिबल इन द ट्रायंगल? हियर देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल हु इज थिंकिंग. पेज नंबर 154. फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1. वी चेक्ड बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्रायंगल्स हैविंग साइड लेंथ्स 3 सेंटीमीटर्स 4 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स. चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 2. कैन वी से एनीथिंग
about the existence

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती जिनका परिचय हम आपसे करेंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
3: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM, इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
2: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
3: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियोस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा एम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट्स बनाएं, स्क्रिप्ट्स बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में, क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
2: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
3: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखें तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
2: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप एफएम रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
3: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा
2: जी,
3: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है।

0: कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं मुझसे प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रीयता बदलेगी, क्षेत्रीयता बदलेगी तो भाषा बदलेगी, भाषा बदलेगी तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कॉन्टेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुवादित कर अपनी भाषा में उन तक पहुंचा सकती हूँ।
0: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है।
1: जी
0: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़ें। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में AI की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट AI की से बनाकर, जो कि लोकल डायलेक्ट में हो, उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
1: देखिए, जब आपने कहा बताया आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली। जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे 1-to-1 टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर रही है। AI उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, AI आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप AI की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना, ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा, तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है, वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर, आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या,
0: बिल्कुल
1: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है, उसने सिर्फ मदद की है।
0: जी
1: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं,

0: तो भला फिर मुझ जैसा एआई कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल,
0: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
1: हाँ, सब अपने आप में
0: पूर्ण है, यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
1: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं। ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एआई की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ एआई नहीं कहूंगी, यहाँ पर आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
1: बिल्कुल,
0: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बाकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो एआई उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या एआई के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम एआई यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
0: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि एआई यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं एआई की मदद से, आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। एआई टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और देखिए जो समय आप आधा घंटा लगाते हैं उस गाने को ढूंढने में, एआई टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
1: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
0: तो कहने का अर्थ ये कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का, वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना, वो सब कुछ विश्वसनीय हो।
1: क्रेडिबिलिटी
0: बहुत जरूरी है। तो वो एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ एआई की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, एआई की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो एआई पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
1: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
0: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं, और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता। तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने एआई के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
1: नहीं,
0: पूछ ली?
1: जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
0: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से एआई पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
1: जी,
0: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
1: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
0: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
1: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
0: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
1: जी,
0: तो जो हमें यहां सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं। और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है। क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
1: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या एआई टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
0: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
1: जी,
0: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को, या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल कर या एआई का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना, वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं।
1: जी,
0: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर एआई पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
1: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें एआई टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है।
1: जी बिल्कुल सही कहा, हमें एआई टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को एआई किस तरफ ले जा रहा है, ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
0: देखिए, मैं ये कहूँगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
1: जी,
0: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
1: बिल्कुल,
0: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था, अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि एआई सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से एआई ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम एआई से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
1: जुड़ गए हम, जुड़ गए
0: रेडियो के माध्यम से। भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
1: जी।
0: तो अगर हम एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए एआई की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार, अगर जो लोग चैट जीपीटी और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और एआई आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है, ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम, हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उन्हें एआई को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
0: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट एफएम स्टेशंस हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर खास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो या कोई भी एफएम स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में, यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि एआई की दिल की आवाज के जरिए।
1: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या एआई लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
0: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या एआई मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या एआई मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला, मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से जिस भी क्षेत्रों को मैं संबंध रखती हूँ जिस भी क्षेत्र से, तो जो चीज मुझे बिन मांगे मिल गई वो मांग कर यानी कि एआई के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, एआई जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। एआई फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
1: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है
0: जी।
1: एआई हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI, तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
2: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुरोशारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
6: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
5: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
6: तो भुगतो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: ओम गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
4: The world is here.

गण गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओम गड़गड़पतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर

शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महावारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
1: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओम गड़गड़पतये नमः।
0: ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
1: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
0: तो नहीं है आपके आहार में दम,
1: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी

0: को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओम गड़ गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए

0: के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: ओम गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश,

0: फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ओम गणपतये नमः। ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Mm-hmm.
4: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा। सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरोशादा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Music, Desi Trap, Singer, Lyricist, Composer, Simran Kaur Dudley, Title, Dilbar Jani. Let's listen to it only on Sono Sharda 90.8 FM.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी के आप सभी को सुरो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: चमन, टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अब्बा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा।

0: तो फिर हम भी करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण

0: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
1: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
0: नहीं चंदन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
2: कचरा भी आएगा तुम्हारा काम, तो ये गया गीले कचरे में। और मेरे पास है सूखा कचरा।
0: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
2: हजारों साल तक सड़ते नहीं
1: और खतरनाक भी होते हैं,
0: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
1: वाह, बार बार इस्तेमाल।
2: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
0: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
2: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
1: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
3: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
2: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी, हा?

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
0: धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले,
1: कुपोषित
0: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
0: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
3: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
2: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
3: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
2: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
4: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
8: बिल्कुल सोचा है पापा।
7: क्या सोचा है?
8: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
7: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
8: जी पापा।
7: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
8: हाँ पापा बिल्कुल।
9: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
10: So where are you? The world is here at Sharda University.
11: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
12: ओम गड़ गणपतये नमः।
13: ये दिव्य मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख और असीम आनंद लेकर आए। बुद्धि, समृद्धि और किसी भी शुभ कार्य से पहले जिनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश के जन्म और उनके स्वागत के सम्मान में मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी की आप सभी को सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।